नया न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं 2000 पाउंड का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 पाउंड के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए एट winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th ऑगस्ट। यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर विथ वन एंट्री पर हाउसहोल्ड। टीज एंड सीज अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू ट्राइड Dawat Extra Long Basmati.
1: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
2: Goodbye.
1: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
0: आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफोर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूसडे टू संडे।
3: UK, get ready for the biggest Bollywood party of the year. Pepe's Piri Piri proudly presents the sensational Queen of Bollywood Beats, Neha Kakkar, live in concert. And joining the madness, Tony Kakkar. 11th of October 2026, live at the iconic OVO Arena Wembley. An unforgettable night of music, energy and non-stop entertainment awaits you. Tickets are selling fast. Book yours now before it's sold out. Brought to you by Rock On Music, PRC Direct, Embryo Events, UK Event Life and Tutors Valley. Catering partner Ragasan, associate partner Shan Properties, radio partner Sunrise Radio.
4: No, it's okay. Don't adjust your radio. That's the sound of a company that did not advertise on Sunrise Radio. Now let's have a listen to a company that did. Can you hear the difference? Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station and see the difference for yourself. Call the Sunrise Radio sales team on 020 8574 7777.

साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

आज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।